देने बैजे साया दे शिशे हाल देने बैजे साया दे हो या गुस्सा ना के न आशा हाल राय न आशा ऐसा आय बैजे साया दे हो कोई ऐगो